वंदे मातरम, सुप्रभात, नमस्कार। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूँ आप सभी का रेडियो साथी सहकर चैटर्जी। आप सभी स्वस्थ रहें, सानंद रहें, इसी मंगल कामना के साथ

आपका स्वागत है आज की हमारी प्रातःकालीन सभा में। आज है अंग्रेजी सन ईसवी 2026 की अगस्त माह की 30 तारीख, तदनुसार शक संवत 1948 की भाद्र माह की 8वीं तिथि। अभी हमारी स्टूडियो की घड़ी में 5:58 होने को है। प्रारंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर सहयोग की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए थे।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति मिर्ज़ियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज़्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज़्बेकिस्तान।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात का प्रसारण करेगा। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात सुनेंगे। वहीं पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदाय के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम से पहले श्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व पर

आधारशिला रखेंगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व

0: मनप्रीत कौर भारत की कप्तानी करेंगी, जबकि स्मृति मंधाना उप कप्तान होंगी। मौसम विभाग ने उड़ीसा में अगले दो दिनों के लिए तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में भी आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दोस्तों, आप सुन रहे थे हमारे दिल्ली केंद्र से जुड़कर हिंदी समाचार। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं खेत खलिहानों की, किसान भाइयों की। जुड़ते हैं खेती की बातें कार्यक्रम से और सुनते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। आलेख एवं वाचन स्वर प्रतिमा वर्मा का है।
2: तमाम किसान भाई बहनों को हमारा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम खेती की बातें में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज बातें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की। जी हां किसान भाइयों, केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हम सभी जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का अहम योगदान है। इसके लिए सरकार द्वारा किसानों की आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान समय में सरकार द्वारा मछली पालन करने वाले किसानों को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत में मछली पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत मछली पालन करने वाले किसानों को बैंक ऋण, बीमा वगैरह अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान है। यदि किसान भाई इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से मछली पालन व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों की आय में वृद्धि करने के साथ ही उनके जीवन स्तर में सुधार करना है। दरअसल सरकार इस योजना के अंतर्गत मछली पालन को बढ़ावा देना चाहती है, जिसे जलीय क्षेत्रों में व्यवसाय को एक बड़े पैमाने तक बढ़ाया जा सके। किसान भाइयों, केंद्र सरकार द्वारा ये योजना मछली पालन के क्षेत्र में अब तक की चलाई जाने वाली योजनाओं में सबसे बड़ी योजना है। इसके अंतर्गत मछली की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही मत्स्य पालन करने वाले लोगों को जिले स्तर पर विभाग द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत मछली विक्रेताओं को आइस बॉक्स के साथ साइकिल उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे उन्हें मछली बेचने में काफी आसानी होगी। आइस बॉक्स के माध्यम से किसी भी मौसम में मछली के खराब होने का डर नहीं रहेगा। योजना की देखरेख के लिए राज्य स्तर तथा जिला स्तर पर समिति का गठन किया गया है। इस योजना का उद्देश्य है कि रोजगार के साथ साथ उद्यम निर्माण में भी सहायता प्राप्त हो। किसान भाइयों, देश के अधिकांश राज्यों में मछलियों की मांग काफी अधिक है। ऐसे में यदि इस क्षेत्र को और अधिक विकसित करने के साथ ही उन्नत बनाने में ध्यान दिया जाए तो इससे रोजगार के अवसरों में काफी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य मत्स्य पालन के क्षेत्र को अधिक विकसित करना है। इस योजना के तहत भूमि और पानी के विकास, ऊंचाई चौड़ीकरण और लाभकारी उपयोग के माध्यम से मछली निर्माण में सुधार आएगा। योजना का मुख्य लाभ यह है कि मछुआरा और मछली पालन करने वालों की कमाई में बढ़ोतरी होगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभार्थी मछली पालक किसान, मछली श्रमिक और मछली विक्रेता, मत्स्य विकास निगम, मछली पालन में स्वयं सहायता समूह, मत्स्य सहकारी समितियां, मत्स्य पालन संघ, मछली किसान उत्पादक संगठन शामिल हैं। इस योजना के तहत देश के सभी मत्स्य पालक और किसान आवेदन कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोगों को इस योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाना है। इस योजना के लाभ लेने हेतु आधार कार्ड, मछली पालन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, बैंक खाते का विवरण, आवेदक का जाति प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है। किसान भाइयों, आज हमारी कृषि व्यवसायीकरण के दौर से गुजर रही है। कृषि के क्षेत्र में अन्य और सब्जी फसल उत्पादन के अतिरिक्त स्वरोजगार से जुड़े कृषि कार्य पर बल देने की आवश्यकता है, जिससे अधिक से अधिक पूंजी का निर्माण हो सके और हमारे कृषि का विकास हर क्षेत्र में हो सके। इसलिए आवश्यक है मछली पालन जैसे रोजगार से जुड़कर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने की। इस हेतु सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का हमें भरपूर लाभ लेना चाहिए, जिससे हमारा और हमारे देश का विकास हो सके। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज हुई बातें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की। इसी के साथ हमें कार्यक्रम खेती की बातों से अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: दोस्तों, आप सुन रहे थे खेती की बातें कार्यक्रम। आइए अब जुड़ते हैं रामचरित मानस गान से और सुनते हैं रामचरितमानस गान की कड़ी संख्या 200।

शूर्पणखा से खर दूषण समेत राक्षसी सेना के विध्वंस का वर्णन सुन रावण के अंग प्रत्यंग जल उठे। बालक दिखने वाले दशरथ पुत्रों की वीरता और उनके साथ एक अत्यंत सुंदर स्त्री के होने का समाचार जान रावण सोच में पड़ जाता है। वो जानता है कि देवता, मनुष्य, पशु पक्षी किसी योनि में कोई ऐसा प्राणी नहीं जो उसके सेवकों का भी सामना कर सके। यदि पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए स्वयं भगवान ने ही अवतार लिया है तो वो हठपूर्वक उनसे वैर मोल लेगा और स्वयं प्रभु के वाणों से मारा जाकर मुक्ति प्राप्त करेगा। ऐसा निश्चय कर वो रथ पर अकेला सवार होकर वहां चला जहां सागर तट पर मारीच रहता था।

अहंकार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत में अहम अर्थात मैं से हुई है। मैं में केंद्रित होने वाला व्यक्ति अहंकार रूपी रोगों से ग्रसित हो जाता है। छोटा सा बच्चा जब वह जन्म लेता है तो उसके भीतर किसी तरह का कोई भी अहंकार नहीं होता, निश्चल होता है उसका मन। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वह बड़ा होता है, उसके अंदर भी प्रतिस्पर्धा का भाव जगने लगता है, कुछ अलग करने की, दूसरों से अलग दिखने की, और धीरे धीरे उसके अंदर भी अपने भाई बहनों के प्रति प्रतिस्पर्धा के भाव आ जाते हैं, यानी उसके अंदर भी अहंकार का बीज पनपने लगता है। शुरू में तो यह भाव आवेग हमारे वश में होता है, पर समय बीतने पर यह इतना बलशाली हो जाता है कि हम उसके अधीन हो जाते हैं। हमारे सारे कार्यकलाप ही अहंकार पूर्ति से प्रेरित होने लगते हैं। अहंकार वह पात्र बन जाता है जो कभी भी भरने का नाम ही नहीं लेता। धन, पद, प्रतिष्ठा, यश पाकर भी हम हमेशा अतृप्त रह जाते हैं। जीवन उस मरुस्थल की तरह, रेगिस्तान की तरह बन जाता है जिसमें अहंकार तृप्ति की प्यास मृत तृष्णा की जैसे बन जाती है। अहंकार से मानव रोगों से ग्रसित होने लगता है। अहंकार के बलवती होने से जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण और जटिल हो जाता है। अहंकार के मद में हम और अधिक गहरे डूबते चले जाते हैं। हमारे अंदर ईर्ष्या, लोभ, क्रोध, ये सब लक्षण उभरने लगते हैं जो अहंकार के कारण होते हैं। अहंकार के चक्रव्यूह को तोड़ पाना आसान नहीं है। उसके लिए सबसे पहले मन में नम्रता, समर्पण और त्याग को अपनाना होगा, और जब हम इसे अपनाएंगे तभी हमारे अंदर का अहंकार मिटेगा। क्योंकि यह अहंकार हमारे मन मस्तिष्क में छुपा हुआ होता है, इसलिए हमें अपने मन मस्तिष्क को साफ रखना होगा, किसी के प्रति किसी प्रकार का द्वेष नहीं पालना होगा, तभी जाकर हमारे अंदर का अहंकार मिटेगा। अहंकार से छुटकारा पाने के लिए हम अपने इस सुंदर शरीर से, जो कि सांसारिक है, और ये पद प्रतिष्ठा जो कि क्षणभंगुर है, इससे हम बच कर रहें। यानी जब हमारे अंदर ये भाव आ जाएगा कि ये सब तो बस दिखावे के लिए ही है, तो हमारे अंदर अहंकार नहीं पनप पाएगा। अंतर मन की आत्मा से जो व्यक्ति जुड़ जाता है उसके अंदर अहंकार नहीं जम हो पाता है। अहंकार का अंधेरा अपने आप छटने लगता है यदि हम उस प्रकाश को महसूस कर लें, लोगों के प्रति ईर्ष्या को दूर कर दें, सभी को अपना समझें, तब जाकर हमारे अंदर का अहंकार मिटने लगता है। इसलिए अपने अंदर के अहंकार को मिटाने के लिए हमें समभाव की नीति अपनानी होगी। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई निर्धन नहीं, कोई धनी नहीं, कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं, सभी समान हैं और अपने अपने कार्य क्षेत्र में, कार्य यात्रा में वो लगे हुए हैं। और जब हम ऐसा सोच पाएंगे तो हम अहंकार से रहित हो जाएंगे।

ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे थे चिंतन। आइए दोस्तों आप जुड़ते हैं भक्ति संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम आराधना से और सुनते हैं कलाकार मौसमी की आवाज़ में ये खूबसूरत सा भक्ति संगीत।

0: आइए दोस्तों, आराधना कार्यक्रम के बाद अब जुड़ते हैं स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम से। और राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा अभी चल रहा है, तो आकाशवाणी डाल्टनगंज की प्रस्तुति सुनिए, नेत्रदान से दृष्टिदान संभव। ये एक भेंटवार्ता है और भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर राकेश कुमार, जो नेत्र विभाग के विभागाध्यक्ष हैं मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज पलामू से। इनसे बातें कर रहे हैं रेडियो साथी संजय कुमार सिन्हा।
1: नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा। कहा गया है कि नेत्रदान महादान है। इसका अर्थ है मृत्यु के बाद अपनी आँखें, जो विशेषकर जो कॉर्निया होता है, उसका दान करना। और ये मनाया जाता है 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक, और हम सभी ये मना रहे हैं। तो नेत्रदान कैसे करें, नेत्रदान की क्या अहमियत है, इस विषय पर विशेष बातचीत करने के लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर राकेश कुमार जी को। डॉक्टर साहब, आपको हमारा नमस्कार।
2: नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आकाशवाणी को अपना धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस विषय में बोलने के लिए बुलाया। मैं मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट नेत्र विभाग में हूँ। तो हमें समझना होगा कि नेत्रदान क्यों ज़रूरी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन कॉर्नियल ब्लाइंडनेस, जो हमारा एक लेयर होता है कॉर्निया आँख के ऊपर होता है, उसके कारण लोग देख नहीं पाते हैं, बहुत लोग अंधे रह जाते हैं। तो किसी के दान देने से हम उसे एक नई जिंदगी प्रदान कर सकते हैं, वो दुनिया को देख सकता है। इसलिए नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है, ताकि जो बच्चे नहीं देख पाते हैं वो देख सके। इसके लिए हमारे लिए एक टीम होती है, जिसमें काउंसलर होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, आई स्पेशलिस्ट होते हैं। वो टीम होती है जहाँ भी जिन्होंने प्लेटफॉर्म को साइन किया है, जो अपना नेत्रदान करने की इच्छा रखते हैं, उसके पास हमारी टीम जाती है। हमारी कोशिश होती है कि 6 से 8 घंटे के अंदर उनके कॉर्निया को रिट्राइव किया जाए और प्रॉपर जगह पर भेजा जाए, नहीं तो कॉर्निया डिहाइड्रेटेड हो जाता है, सूख जाता है। अच्छा। उसके पहले भी बहुत सारा प्रोसीजर है, जैसे मरने के बाद पुतली को पूछ नीचे कर देना है, उसके सर के नीचे तकिया टाइप देना है, ठीक है, पूरा प्रॉपर हाइड्रेशन होना चाहिए।
1: ये जानकारी चाहेंगे डॉक्टर राकेश कुमार जी कि जैसे क्या है कि हमारी भी इच्छा है कि अगर हमने अपनी कॉर्निया को दान करना है, तो क्या इसका सिस्टम क्या है, कहाँ पर करना है, कैसे करना है, क्या इसका कोई ग्रुप है, व्हाट्सएप है, क्या है इसका?
2: ये इसके लिए है ना, मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज में, जैसे या रिम्स हो गया, या जितने ही मेडिकल कॉलेज में
1: स्थानीय स्तर पर,
2: हाँ स्थानीय, जैसे पलामू हमारा स्थानीय स्तर है, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे जाके एक प्लेटफॉर्म आप भर सकते हैं, और किसी अपने जो आपका उत्तराधिकारी है उसको बता सकते हैं कि हमारे मृत्यु के बाद इसको ये करना है। तो आप जैसे ही किसी की मृत्यु होती है, आपका जो नज़दीकी है वो हमें इन्फॉर्म करेगा कि इनकी मृत्यु हो गई है, हमारी टीम आएगी और आपके कॉर्निया को रिट्राइव करेगी, आपका दान लेगी। स्वास्थ्य विभाग भी इसमें बहुत तत्पर है, हम लोग बकायदा पोस्टर निकालते हैं, रैली करते हैं, जैसे आपके आकाशवाणी में, दूरदर्शन में हम लोग अपना वक्तव्य देते हैं, मरीज भी आते हैं तो उन्हें हम समझाते हैं, ठीक है। जैसे हॉस्पिटल में भी बहुत सारे अननोन लोग को अगर डेथ हो जाता है, तो वहाँ भी हमारी काउंसलर टीम रहती है, उन लोगों को समझाती है कि स्ट्रोक से किसी का डेथ हो गया है कि आप कॉर्निया दान करिए, हॉस्पिटल में भी कॉर्निया हम लोग ले सकते हैं और किसी को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो सरकार इसके प्रति सजग है और बहुत सारे प्रोग्राम भी सरकार इसके लिए ला रही है, जैसे हॉस्पिटल में भी बहुत सारे आजकल कॉर्निया मिल जा रहे हैं और जिसका हम लोग उपयोग कर पा रहे हैं।
1: तो ये कैसे दान करें, किन लोगों को दान करनी चाहिए? जैसे क्या है कि उम्र सीमा होती है, अगर कोई 60 के बाद जिनकी मृत्यु होती है या 80 के बाद मृत्यु होती है, तो कैसे क्या 60 के बाद या फिर 80 के बाद वाले सभी आँख स्वस्थ रहते हैं क्या?
2: देखिए, इसमें सारे लोग किसी भी उम्र में, किसी भी धर्म विशेष, सब लोग दान कर सकते हैं। अच्छा। इसमें कोई उम्र सीमा की बाध्यता नहीं है।
1: अच्छा,
2: ठीक है। सबसे पहले वो दान जो नहीं कर सकते हैं, जो जैसे जिनको HIV हुआ हो, हेपेटाइटिस हुआ हो, कैंसर के रोगी हो, या कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो, उन लोगों का हम लोग दान स्वीकार नहीं करते हैं।
1: अच्छा।
2: और इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं 60 साल का है, 60 साल के व्यक्ति का भी हो ले सकते हैं, 80 साल के व्यक्ति का भी ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास स्पेक्युलर माइक्रोस्कोपी होती है, उससे हम लोग देख लेते हैं कॉर्निया में कितना एंडोथेलियल काउंट्स है, सही है कि गलत है। कभी कभी 80 साल के व्यक्ति में भी कॉर्निया बहुत हेल्दी होता है, जिसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। इसलिए कोई उम्र की बाध्यता नहीं है, कोई धर्म की बाध्यता नहीं है, कोई लिंग की बाध्यता नहीं है, कोई भी लोग दान कर सकता है।
1: बस स्वस्थ कॉर्निया स्वस्थ होना चाहिए,
2: कॉर्निया स्वस्थ होना चाहिए। डायबिटीज व्यक्ति भी कर सकता है, जिसका कि ग्लोकोमा का सर्जरी हुआ है, जिसका रेटिना का सर्जरी हुआ है, वो लोग भी दान कर सकते हैं।
1: तो इसके लिए क्या है कि आप स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करेंगे, वो अपना फॉर्म मिलता होगा, उसका
2: प्लेस फॉर्म बोलते हैं,
1: प्लेस फॉर्म
2: मेडिकल कॉलेज में नेत्र विभाग में अवेलेबल होता है, वो अपना जाके काउंसलर्स उनको सारा चीज़ बता देंगे कि इस किस तरह से किया जाता है।
1: अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है दुर्घटना में, जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो तत्काल हॉस्पिटल सारी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद उनका संस्कार होता है, तो ऐसी

0: स्थिति में जो जिनका दुर्घटना हो गया है, क्या वो भी चाह सकते हैं कि उनके परिवार के लोग कि वो भी दान दे सकते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, जिनका दुर्घटना हो गया है उनके परिवार का एक जो नज़दीकी आदमी है, जो गार्जियन है, मान लीजिए यंग है तो बालिग नहीं है तो, और मान लीजिए कोई बुज़ुर्ग हैं तो उनका जो उत्तराधिकारी है वो बता सकता है कि दान करना चाहते हैं और इनका लिया जाए, उनका दान हम लोग स्वीकार
0: जो
1: कर
0: दान
1: लेते
0: किया हो, जो नेत्र होता है, जो कुर्निया होता है, माने कि जो बचपन से अंधे हुए हैं उनको कुछ भी दिखलाई नहीं दे रहता है बेचारे, हम तो सभी दृश्य को देखते हैं, आनंदित होते हैं, फूल को देखते हैं, पहाड़ों को देखते हैं, कितना सुंदर मनोरम दृश्य को देखते हैं, लेकिन जिनकी आँखें नहीं हैं वो कल्पना मात्र करते हैं, तो क्या ऐसे जो लोग हैं जो नेत्रहीन हैं तो वो जो कुर्निया उनमें वो सेट कर जाता है, कैसे करेंगे वो?
1: देखिए रेटिना डिजीज है कुछ है तो दूसरी चीज़ के पर्दा के कारण हुआ है तो उसमें कॉर्निया वो बहुत नहीं काम करेगा, लेकिन किसी को ब्लाइंडनेस यदि कॉर्निया के हेजीनेस के कारण है, कॉर्निया में दाग पड़ गया उसके कारण है, तो किसी का भी कॉर्निया लेकर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और उसे प्रॉपर रोशनी आ सकती है, जैसे आप देख रहे हैं हम देख रहे हैं वैसे वे लोग भी देख सकते हैं जो कॉर्निया से ब्लाइंड जिनको हो रहा है,
0: चोट से संबंधित जो भी
1: कॉर्निया से जो संबंधित है
0: वहाँ वो प्रत्यारोपण
1: हो जाता है।
0: मान लीजिए जो गरीब तबके के लोग हैं तो कैसे जानकारी प्राप्त करें कि हमारा जो कॉर्निया खराब है, ये अगर कोई हमको दे देता है दान तो हम देख सकते हैं, तो इसके लिए कैसे उन लोगों को प्रेरित किया जा सकता है?
1: उनको प्रेरित किया जा सकता है, स्कूल लेवल पे हम लोग प्रेरित कर सकते हैं, बच्चों को जाके स्कूलिंग में जो बच्चों को हम लोग जाके बता सकते हैं वो कि कॉर्निया हम लोग को ये दान होता है, जैसे रक्तदान, पहले लोग सोचते थे कि रक्तदान करना बहुत दिक्कत होता है, लेकिन आज रक्तदान लोग कर रहे हैं, तो स्कूल लेवल से ही स्टार्ट करना होगा, हम लोग रैली निकालते हैं, सब कुछ समझाते हैं, और किसी मान लीजिए गरीब तबका का भी लोग है तो वो अस्पताल में आए और जेन्युइन है तो उसका हम लोग एक सीरियल नंबर बना देते हैं, इनके बाद इनका ही कॉर्निया का प्रत्यारोपण किया जाएगा, तो उस सीरियल नंबर को फॉलो करते हैं हम लोग, कोई दान दिया तो वो जैसे कॉर्निया दान मिला तो एक नेशनल प्रॉपर्टी बन गई, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, उसमें भी हम लोग डिसाइड करते हैं किसको सबसे ज़्यादा जरूरत है, मान लीजिए कोई दोनों आँख से नहीं देख पा रहा है, सिर्फ एक आँख का आदमी है, ठीक है, उसको हम लोग पहले देंगे, लगता है कि वो यंग आदमी है, ठीक है, तो उसको हम लोग पहले देंगे, तो ये सब बहुत सारा प्रोसीजर है, सबको हम लोग फॉलो करते हैं।
0: कहा भी गया है कि जैसे शरीर के बहुत सारे अंग को लोग दान करते हैं, शरीर के केवल कॉर्निया ही दान होता है, शरीर के विभिन्न अंगों को भी दान किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारा जो बैंक होता है, जैसे कॉर्निया का भी बैंक होता होगा रखने का, जहाँ पर सुरक्षित तरीके से रखा जा सकता है, क्या हमारे यहाँ डाल्टनगंज में उपलब्ध है ये चीज़?
1: नहीं, अभी हमारे डाल्टनगंज में उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसकी प्रक्रिया चालू है सरकार की तरफ से, और सरकार का प्रयास है कि पलामू में भी नेत्र बैंक की स्थापना की जाए, उसके लिए वो लोग प्रयासरत हैं, उसमें कार्य चल रहा है।
0: और जो दान देने वाले हैं उसका पूरा जो है बायोडाटा वगैरह सारा चीज़ उसमें मेंशन होता होगा। दान करने वाले को या उनके परिवार को किसी तरह का प्रोत्साहन राशि भी दिया जाता है क्या?
1: प्रोत्साहन राशि तो सरकार के द्वारा दी जाती है, रिम्स वगैरह में वो किया जाता है कि जो उनका साथ वाला है तो उनको फ्री में देखा जाता है, कुछ भी है तो उसमें सब्सिडी वगैरह दी जाती
0: है, किसी तरह का सहयोग जो है
1: सरकार के द्वारा दिया जाता है,
0: स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किसी तरह का,
1: हाँ, दिया जाता है,
0: मुहैया कराई जाती
1: जी
0: है। तो नेत्रदान जो हम पखवाड़ा हम लोग मना रहे हैं, इसका उद्देश्य है कि लोगों में जागरूकता बढ़ाना, तो स्थानीय स्तर पर जैसे आपने कहा कि विद्यालय में जाकर लोगों को, बच्चों को जागरूक करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या इसका कार्यक्रम है?
1: ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम लोग सैया और ANM GNM के माध्यम से हम लोग रैली आयोजित करते हैं सब जगह, जैसे सब CSC PSC में भी हमारे नेत्र सहायक हैं, उन लोगों को भी सारा समझाया जाता है, वो सुदूरवर्ती क्षेत्रों का भ्रमण करते हैं और इसका प्रचार प्रसार करते हैं।
0: कुछ लोगों में ये भ्रांतियाँ भी होती हैं, जैसे क्या है कि मरने के बाद भी लोग चाहता है कि हमारे जो भी सदस्य गुजर चुके हैं तो उनके शरीर जो है वो किसी तरह का खराब ना हो, खराब स्थिति में ना हो, अगर उसका संस्कार करने जा रहे हैं तो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, तो इस विषय पर क्या कहना है?
1: देखिए हमारे हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार हम लोग जानते हैं कि शरीर चला जाता है लेकिन हमारी आत्मा जिंदा रहती है, तो एक नेत्रदान करने से वो व्यक्ति अमृत को प्राप्त कर जाता है कि उसके माध्यम से कोई देख रहा है, उसका एक चीज है जो उसके माध्यम से सब कुछ देख रहा है, ठीक है, तो हम लोग इसमें नेत्रदान में ऐसी भ्रांतियां नहीं है, जो भी जैसे कॉर्निया को निकाला गया तो प्रॉपर करके इनको सूचर किया जाता है कि उसे देखने में भी खराब ना लगे व्यक्ति का, उसमें हम सब लेकर हम लोग उसको प्रॉपर सूचर कर देते हैं और जो जैसे दिखाई देता है मरने के बाद वैसे ही उनका दिखाई देता है, अलग से कुछ ऐसा नहीं,
0: शरीर में छत विछत नहीं, पूरी तरह से सुरक्षित
1: है। ऐसे भी मरने के बाद आई श्रंकन हो जाता है, आँख धस जाता है, उसी तरह हम लोग उसको निकाल लेते हैं,
0: निकाल लेते हैं।
1: और जो देश में दिन प्रतिदिन कॉर्नियल ब्लाइंडनेस की संख्या जो बढ़ रही है, जो गैप बढ़ रहा है, उसको हम लोग पूरा कर सकते हैं, शिक्षा ही महत्वपूर्ण साधन है।
0: ये तो हम लोग पखवाड़ा मना रहे हैं, नेत्रदान पखवाड़ा जो मना रहे हैं हम लोग, वो 8 सितंबर तक, अभी 25 तारीख से प्रारंभ हो गया है, तो पखवाड़ा मना रहे, लोगों को जागरूक करने का मेन उद्देश्य है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। तो ये सरकार इस प्रचार प्रसार के माध्यम से जो पोस्टर लगाती है, पंपलेट लगाती है, तो ग्रामीण स्तरों पर भी इसका प्रचार प्रसार होता है कि नहीं होता है? जैसे आपने कहा कि सहिया के द्वारा होता है या फिर जो है सहिका के द्वारा होता है, तो स्वास्थ्य जैसे क्या है, उप स्वास्थ्य केंद्र होते हैं गाँव में, उप स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, तो उप स्वास्थ्य केंद्र में भी किस तरह का बैनर पोस्टर लगता है कि नहीं लगता है?
1: उप स्वास्थ्य केंद्र में भी सहिया नेत्र सहायक द्वारा सारा बैनर पोस्टर लगाया जाता है ताकि लोगों में संदेश जाए कि नेत्रदान करना कितना ज़रूरी है।
0: तो ये अभी जो चल रहा है, तो ऐसे समय में सारे जो है उप स्वास्थ्य केंद्र में ये प्रचार प्रसार हो रहा होगा?
1: हाँ, सब जगह प्रचार प्रसार। सरकार का प्रयास है कि दूर दूर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी हमारा जो कार्यक्रम है कॉर्निया दान वाला वो पहुंचे और लोगों में जागरूकता फैले।
0: आप नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, कभी दौरा आप करते हैं कि नहीं उप स्वास्थ्य केंद्रों का?
1: नहीं, हम लोग जैसे मैं मेडिकल कॉलेज में पदस्थ हूँ, तो हम लोग को शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दो जगह बांट दिया जाता है। तो हम लोग शहरी क्षेत्र और रूरल क्षेत्र में, अब हमारा जो आवंटित जगह है, हम लोग वहाँ पे जाते हैं और जागरूकता फैलाते हैं। जैसे मेडिकल कॉलेज में है तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, वहाँ पे हम लोग प्रोग्राम कर देते हैं, उनको काउंसलिंग वहीं पे कर देते हैं कि आप ऐसा करिएगा तो आपको ऐसे फ़ायदा होगा, आपका बच्चा देख सकता है कॉर्निया, इसको ज़रूरत है, आप दीजिएगा तभी किसी को फ़ायदा होगा, तो वैसे हम लोग समझाते भी हैं।
0: अब जो अभी का जो समय हो गया है डॉक्टर साहब, अभी जो है सोशल मीडिया का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये प्रचार प्रसार किया जा सकता है? आपके विभाग इसमें सक्रिय है कि नहीं है?
1: हमारी विभाग इसमें सक्रिय है, इंस्टाग्राम, टीवी, जैसे आपका आकाशवाणी, दूरदर्शन, इसके द्वारा भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है, फेसबुक के द्वारा किया जा रहा है कि कॉर्निया का ये दान किया जाए। और जैसे आप बोल रहे हैं कि जैसे हमारे जैसे सेलिब्रिटीज़ हैं, अमिताभ बच्चन हो गए, ऐश्वर्या राय, इन सबों ने अपना प्लेटफॉर्म भर के रखा हुआ है, तो भी लोगों में एक संदेश जाता है कि बाकी जो सेलिब्रिटीज़ अपना नेत्रदान कर रहे हैं तो हम लोग भी आगे आएँ, हम लोग भी करें।
0: एक बात यहाँ पर आती है, जैसे क्या अपने नाम राष्ट्रीय स्तर पर लिया है, जिन लोगों का नाम, स्थानीय स्तर पर भी कुछ ऐसे लोग भी होते होंगे या हैं भी जिन्होंने अपना नाम जो है कॉर्निया दान में लिखवाया होगा, तो क्या ऐसा नाम भी प्लेस करते हैं ताकि लोगों में जागरूकता बढ़ जाए कि फलाना आदमी ने दान किया है तो हमें भी प्रेरणा लेकर उनके अनुसरण उनका करना चाहिए?
1: नहीं, ऐसा तो भी हमारे यहाँ सिस्टम स्टार्ट नहीं हुआ है। जब हमारा मेडिकल कॉलेज में अलग से डिपार्टमेंट, आई डिपार्टमेंट बन जाएगा, तो इस तरह का हम लोग का प्रयास रहेगा।
0: मान लीजिए शहर के जो वरिष्ठ लोग हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रमुख लोगों में शामिल
1: तो
0: होते
1: उनका हैं। हम लोग जैसे पोस्टर बना के उनका फोटो
0: फोटो लगा के ताकि
1: कॉर्निया डिपार्टमेंट में सब हम लोग फ्लैश कर सकते हैं, इन्होंने इतना दान दिया और इनके कारण कोई देख सकता है, वो हम लोग सम्मान के रूप में
0: ताकि तस्वीर को देखकर प्रेरित हों।
1: जैसे मेडिकल कॉलेज में प्रोग्राम चल रहा है, जैसे हमारे यहाँ 100 स्टूडेंट का स्ट्रेंथ है, तो हम लोग प्रोग्राम करते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं।

0: हैं तो उससे ज्यादा बच्चे प्रभावित होंगे
1: जी। वो एग्जाम्पल
0: कोई एग्जाम्पल होगा, जैसे महाविद्यालयों की बात करें तो महाविद्यालय के जो हैं हमारे कुलपति हैं या जो भी पदाधिकारी जो प्राचार्य लोग हैं, इस तरह की अगर बातें करते हैं कि हमने भी जो है दान किया डोनेट किया है, आप सब भी इसमें आगे आना चाहिए, तो ये बहुत बड़ी बात होगी,
1: बहुत बड़ी बात होगी। वो एग्जाम्पल समाज के लिए सेट कर रहे हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं।
0: तो ये इस प्रोग्राम के माध्यम से आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, कुलपति जो हो गए या विश्वविद्यालय से जुड़े हुए?
1: मैं बोलूंगा कि जिन्होंने अपने बड़े बड़े पोस्ट पे रहते हुए, चाहे HOD हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे सुपरिटेंडेंट हो, चाहे सिविल सर्जन हो या कुलपति हो, वो उनके सीनियर्स ने कई प्लेस किया होगा तो उनका पोस्टर अपने अस्पताल में लगाएं, अपने परिसर में लगाएं, कार्यालय में लगाएं और बाकी लोगों को भी प्रेरित करें कि हम भी कर सकते हैं।
0: अनुसरण, उनका अनुसरण करते हुए लोग प्रेरित हों और अपना कुर्निया भी दान दे सके, ताकि जो देख नहीं पा रहे हैं, इस दुनिया को नहीं देख पा रहे हैं, उनकी आँखों को रोशनी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है ये पखवाड़ा पर, नेत्रदान पखवाड़ा पर हमसे बातचीत किया, ये प्रेरित की करने की जो बात आपने कही है, इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों में प्रेरणा मिलेगी कि कुर्निया दान करना बहुत बड़ी बात है और आपके कुर्निया से जो आपका जो आँख है वो हमेशा जीवित रहेगा। आपका शरीर मर जाता है लेकिन आपका कुर्निया हमेशा जिंदा रहेगा।
2: दोस्तों आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा। आइए दोस्तों अब जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से और बारी बारी से सुनते हैं संस्कृत समाचार, हिंदी समाचार और अंग्रेजी समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: सहायिका सेवाः प्रचलन्ति। अत्रान्तरे विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अवदत् यत् एकादश टन भारयुक्तेन चतुर्थं विमानं C-130J हर्क्युलिस इति अद्य काठमाण्डुनगरं प्रति प्रस्थितम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य प्रातः 11 वादने आकाशवाणीतः मन की बात इति कार्यक्रमे स्वीयं मनोगतं प्रकटयिष्यति। मासिकस्य अस्य आकाशवाणी कार्यक्रमस्य एतत् 37-तमं संस्करणं भविष्यति। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति। अयं हि कार्यक्रमः आकाशवाणी वार्ताविभागस्य अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अपि च न्यूज़ ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीये तन्त्रांशे अपि उपलब्धौ भविष्यति। आकाशवाणी दूरदर्शन वार्ता प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना प्रसारण कार्यालयानां यूट्यूब वाहिनीभिः अपि अस्य कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणं भविष्यति। हिंदी भाषायां प्रसारणस्य पश्चात् अस्य प्रसारणं आकाशवाण्याः क्षेत्रीयासु भाषासु अपि भविष्यति। भारत ऋतु विभागेन आगामी दिनद्वयोः ओडिशा राज्ये अतिवृष्ट्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता। अद्य अरुणाचल प्रदेशस्य असम राज्यस्य मेघालयस्य छत्तीसगढ़स्य गांगेय पश्चिम बंगालस्य च केषुचित् स्थानेषु अपि प्रचंड वृष्टिः भविष्यति इति ऋतु विभागेन पूर्वानुमानं प्रकटितम्। अद्य बिहार पूर्वी मध्य प्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश झारखंड नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा उपहिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम उत्तराखंड विदर्भ इत्येतेषु स्थानेषु अपि अतिवृष्टेः संभावना अस्ति। महिला क्रिकेट क्रीडायां भारतम् अद्य दुबई अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडांगणे थाईलैंड देशस्य विरुद्धं स्वस्य 20-प्रति-20 एशिया कप इत्यभियानस्य आरम्भं करिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले योगा फेडरेशन ऑफ उज्बेकिस्तान की ओर से आयोजित योग कार्यक्रम से रूबरू होंगे और उसके बाद वो सीधे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के महल जाएंगे, जहां दोनों नेता द्विपक्षीय बातचीत में हिस्सा लेंगे। रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है, लेकिन खनन, रेयर अर्थ मिनरल, सोने जैसी धातुएं, अन्य उपयोगी खनिज पदार्थ, इसके अलावा मेडिकल, कृषि और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ कनेक्टिविटी के नए रास्ते तलाशने पर दोनों देश जोड़ देंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात का प्रसारण करेगा। इसके लिए गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। वहीं पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदायों के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम से पहले श्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव में विश्वास करता है। श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वे समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अभी भी लापता हैं, जिनमें 320 से अधिक विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। इस बीच विदेश मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। करीब 50 अन्य भारतीयों से दोबारा संपर्क स्थापित हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर दलित समुदाय को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. गुरु प्रकाश पासवान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का दलित समुदाय का अपमान करने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने डॉ. भीमराव आम्बेडकर की विरासत का सम्मान किया है। भारत आज महिला क्रिकेट में थाईलैंड के साथ T20 एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगा। भारतीय समय के अनुसार मैच रात 8:30 बजे से शुरू होगा। हरमनप्रीत कौर भारत की कप्तानी करेंगी, जबकि स्मृति मंधाना उपकप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों, अब से कुछ ही देर बाद आप जुड़ेंगे बाल सभा कार्यक्रम से, जो बच्चों को संबोधित कार्यक्रम होता है। इसके बाद दोस्तों 7:30 पर हम जुड़ेंगे शास्त्रीय संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम राग रंग से, सुनेंगे पंडित विश्वमोहन भट्ट का मोहन बिना वादन। इसके बाद दोस्तों सुबह 8:00 हम जुड़ेंगे दिल्ली केंद्र से, सुनेंगे समाचार प्रभात। 8:15 पे मॉर्निंग न्यूज, 8:30 पे रांची केंद्र से जुड़कर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, और 8:45 पर वापस आएंगे आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम सुन सकेंगे पुराने फिल्म गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम गीत गुंजन। दोस्तों, आज का गीत गुंजन कार्यक्रम महान गीतकार शैलेंद्र को समर्पित होगा, क्योंकि आज शैलेंद्र का जन्मदिन भी है। दोस्तों सुबह 9:00 हम जुड़ेंगे जोहार पलामू कार्यक्रम से, और सुनेंगे आज का इतिहास, खेलों की दुनिया और अन्य कार्यक्रमों को। इसके अलावा महान गीतकार शैलेंद्र के जन्मदिन पर विशेष रूप से हम सुनेंगे उनके लिखे गीतों को। इसके अलावा आज है लघु उद्योग दिवस, उस पर भी हम जोहार पलामू कार्यक्रम में चर्चा सुनेंगे। दोस्तों सुबह 9:30 पर हम जुड़ेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम से, जो हमारा फिल्म गीतों का कार्यक्रम है। सुबह 10:00 से लेकर सायं 5:30 तक हम लगातार जुड़ते रहेंगे दिल्ली केंद्र से, मुंबई केंद्र से और रांची केंद्र से, जहां से हम बारी बारी से सुनेंगे हिंदी समाचार, अंग्रेजी समाचार, प्रादेशिक समाचार और विविध भारती से प्रस्तुत बॉम्बे टॉकीज, यादों की महफिल, सुरीला सफर, दोपहर सभा, विविधा, मनचाहे गीत, नाट्य तरंग और उजाले उनके यादों के जैसे कार्यक्रम। इसके अलावा दोस्तों 10:55 से दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र की जनता से मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण। इसके बाद दोस्तों शाम 5:30 पर हम फिर से एक बार जुड़ जाएंगे आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से, जहां से हमारे रेडियो साथी प्रस्तुत करेंगे सायंकालीन सभा में प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

नन्हे मुन्ने बच्चों, छोटे छोटे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है बाल सभा। और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। तो जैसे कि कार्यक्रम का नाम है बाल सभा और हमारे प्यारे प्यारे बच्चे इस बाल सभा में जुड़ने के लिए सप्ताह में एक दिन यानी कि आज के दिन बहुत बेताब रहते हैं, उत्सुक रहते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको सुनाते हैं एक कहानी जिसका नाम है छोटी सी कोशिश। जी हाँ दोस्तों, आप ध्यान से सुनेंगे, इसमें कई ऐसी बातें हैं जो हो सकता है आपकी भी बातें हो। दोस्तों, एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था, उसका नाम था आरव। आरव बहुत साधारण बच्चा था, न वो पढ़ाई में हमेशा प्रथम आता था, न खेल में सबसे आगे रहता था, और न ही उसके पास ऐसी कोई खास प्रतिभा थी जिसे देख कर लोग कहे कि वाह, ये बच्चा तो कुछ अलग है। लेकिन दोस्तों, आरव के अंदर एक चीज थी, वो किसी काम को देखकर ये सोचता था कि इसे बेहतर कैसे किया जा सकता है। एक दिन स्कूल में प्रार्थना सभा के बाद प्रधानाचार्य ने बच्चों को बताया कि उनके विद्यालय में स्वच्छता और सुंदरता को लेकर एक प्रतियोगिता होने वाली है। सभी बच्चे उत्साहित हो गए। किसी ने कहा स्कूल के दीवारों पर रंग करवाया जाए, तो किसी ने कहा नए पौधे लगवाए जाए, तो किसी ने कहा स्कूल के मैदान को सजाया जाए। पर आरव चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था। उसकी नजर स्कूल के पीछे के तरफ पड़ी। वहां एक बड़ा सा खाली मैदान था। मैदान में जगह जगह प्लास्टिक की थैलियां, कागज के टुकड़े और टूटे हुए डिब्बे पड़े थे। आरव कुछ देर उस मैदान को देखता रहा, फिर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, अगर इस जगह को साफ कर दिया जाए और यहाँ पौधे लगा दिए जाए तो ये जगह कितनी सुंदर हो सकती है। विचार तो बहुत अच्छा था दोस्तों, लेकिन समस्या यह थी कि उस मैदान को साफ करना कोई आसान काम नहीं था। तो अगले दिन छुट्टी के बाद आरव अकेला उस मैदान में पहुंच गया। उसने एक झाड़ू उठाई और सफाई शुरू कर दी। शुरू में उसे लगा कि थोड़ी देर में काम पूरा हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वो कूड़ा उठाता गया उसे समझ में आया कि काम उसकी कल्पना से कहीं बड़ा है। दोस्तों, इसी तरह एक घंटा बीत गया। मैदान का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही साफ हो पाया था। आरव बेचारा थक गया। उसने झाड़ू एक तरफ रख दी और जमीन पर बैठ गया। उसके मन में आया, मैं अकेला ये सब कैसे कर पाऊंगा। उसी समय उसे अपनी माँ की एक बात याद आई। उसकी माँ अक्सर कहा करती थी, बेटा बड़े काम देखकर कभी मत घबराना, बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो, फिर एक दूसरे करके उन्हें पूरा करते जाओ। आरव ने मैदान की ओर देखा। उसने सोचा, राइट, मुझे पूरा मैदान आज ही साफ नहीं करना है, आज जितना हो सकेगा उतना करूंगा, फिर उसके बाद। ये बात दिमाग में आते ही उसने जोश के साथ फिर झाड़ू उठाई और काम में लग गया। उस दिन वो पूरा मैदान साफ नहीं कर पाया, लेकिन हतोत्साहित नहीं हुआ। वो पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एक छोटा सा हिस्सा जरूर साफ हो गया था। अगले दिन वो फिर आया। उसने कल से थोड़ा ज्यादा हिस्सा साफ किया। तीसरे दिन उसने उससे भी थोड़ा ज्यादा साफ किया। धीरे धीरे दोस्तों, मैदान बदलने लगा। कुछ दिन बाद आरव ने वहां एक छोटा सा पौधा लगाया। उस पौधे को लगाते समय उसके मन में एक अजीब सी खुशी थी। वो पौधा बहुत छोटा था, इतना छोटा कि अगर कोई उसके पास से गुजर जाए तो शायद उसे ध्यान भी न दे। लेकिन आरव जानता था कि ये छोटा पौधा एक दिन बड़ा पेड़ बन सकता है। अगले दिन उसने एक और पौधा लगाया, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। कुछ बच्चों ने आरव को यह काम करते देखा। पहले तो वो केवल देखते रहे, फिर उनमें से कुछ बच्चे उनके साथ आ गए। किसी ने पानी देना शुरू किया, किसी ने कूड़ा उठाना शुरू किया, किसी ने अपने घर से पुराना गमला लाकर दे दिया, और देखते ही देखते आरव की छोटी सी कोशिश बच्चों की सामूहिक कोशिश बन गई। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। एक दिन अचानक तेज आंधी आई
आसमान में बादल छा गए, तेज हवा चली और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। सुबह जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कई छोटे पौधे टूट गए थे, कुछ गमले उलट गए थे, कई पौधे जमीन पर पड़े थे। जिस जगह को सुंदर बनाने के लिए बच्चों ने इतने दिन मेहनत की थी वो फिर से बिखरी हुई दिखाई दे रही थी। बच्चों का मन उदास हो गया। अरब भी कुछ देर चुप खड़ा रहा। उसके सामने उसकी कई दिनों की मेहनत पड़ी थी। उसने एक टूटे हुए पौधे को उठाया, उसे मिट्टी में फिर से लगाया, फिर उसने बाकी पौधों को देखा और उसके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे अपनी माँ की एक और बात याद आ गई थी। उसकी माँ कहती थी, बेटा पौधा गिर जाए तो उसे उठाया जा सकता है, लेकिन इंसान अगर कोशिश करना छोड़ दे तो उसे कौन उठाएगा। माँ की इस बात याद आते ही अरब ने उसी क्षण तय कर लिया कि वो फिर से पौधे लगाएगा। एक बार नहीं, जरूरत पड़ी तो 10 बार लगाएगा। बारिश आएगी तो फिर लगाएगा, आंधी आएगी तो फिर लगाएगा, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि हार जाना और हार मान लेना, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। हार जाना कभी कभी हमारे हाथ में नहीं होता दोस्तों, लेकिन हार मान लेना हमारे ही हाथ में होता है। अरब ने हार नहीं मानी, उसने फिर से पौधे लगाए। इस बार बच्चों ने पौधों के चारों तरफ लकड़ी की छोटी छोटी बाड़ भी बना दी ताकि तेज हवा और पौधों को सहारा मिल सके। दिन गुजरते गए, छोटे छोटे पौधे धीरे धीरे बढ़ने लगे और कुछ ही सप्ताह में स्कूल का वो पिछला मैदान बदल गया। जहां कभी कूड़े का ढेर दिखाई देता था वहां अब हरियाली दिखाई देती थी। जहां पहले कोई जाना पसंद नहीं करता था वहां बच्चे बैठकर पढ़ने लगे थे, समय बिताने लगे थे। कुछ बच्चे वहां किताब लेकर बैठते, कुछ चित्र बनाते और छुट्टी के समय कई बच्चे पौधों को पानी भी देते। प्रधानाचार्य जी महोदय ने जब ये सब देखा तो उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्होंने बच्चों से कहा, बच्चे तुम लोगों ने सिर्फ एक मैदान साफ नहीं किया है, तुम लोगों ने ये साबित किया है कि बदलाव के लिए हमेशा किसी बड़े साधन की जरूरत नहीं होती। कभी कभी बदलाव के लिए सिर्फ एक बच्चे की छोटी सी कोशिश ही काफी होती है। दोस्तों उस दिन स्कूल को उस प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार मिला, लेकिन अरब के लिए वो पुरस्कार सबसे बड़ी खुशी नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी खुशी ये थी कि जिस मैदान को देखकर कभी वो सोचता था ये इतना गंदा है इसे कौन ठीक करेगा, आज उसी मैदान को देखकर वो सोच सकता था इसे हमने ठीक किया है। और शायद यही इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात थी। अरब कोई बड़ा बच्चा नहीं था, उसके पास बहुत पैसे नहीं थे, उसके पास कोई बड़ी मशीन नहीं थी, उसके पास कोई विशेष शक्ति नहीं थी, उसके पास सिर्फ एक विचार था और उस विचार को सच करने की छोटी सी कोशिश थी। प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी ऐसे बहुत से मौके आते हैं। हम अक्सर किसी समस्या को लेकर देखते हैं और कहते हैं कोई और इसे ठीक करेगा। हम कहते हैं मैं अकेला क्या कर सकता हूं, हम कहते हैं मेरे करने से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन याद रखिए दोस्तों, फर्क पड़ता है। एक छोटी सी कोशिश फर्क डालती है। एक बच्चा किसी पेड़ को पानी देता है तो फर्क पड़ता है। एक बच्चा सड़क पर कूड़ा उठाकर कूड़ेदान में डालता है तो फर्क पड़ता है। एक बच्चा किसी कमजोर साथी की पढ़ाई में मदद करता है तो फर्क पड़ता है। एक बच्चा अपने माता पिता की मदद करता है तो फर्क पड़ता है। एक बच्चा किसी उदास दोस्त की मुस्कुराने की वजह देता है तो फर्क पड़ता है, क्योंकि दुनिया को बदलने वाले काम हमेशा बड़े बड़े नहीं होते। कई बार दुनिया बहुत छोटी छोटी अच्छाइयों से बदलती है। एक दीपक छोटा होता है लेकिन अंधेरे में उसकी रोशनी बहुत बड़ी होती है। एक बीज छोटा होता है लेकिन उसी में एक पूरे पेड़ की भविष्य छिपा होता है। एक कदम बढ़ाया गया छोटा होता है लेकिन वही कदम हमें मंजिल की ओर ले जाता है दोस्तों। और एक कोशिश छोटी हो सकती है लेकिन वही कोशिश किसी दिन एक बड़ी सफलता की शुरुआत बन सकती है। इसलिए अगर कभी आपको कोई मुश्किल काम दिखाई दे तो उससे डरिए मत,
अगर रास्ता लंबा हो तो एक कदम चलिए, अगर मंजिल बहुत दूर दिखाई दे तो बस अगला कदम उठाइए, अगर पहली कोशिश असफल हो जाए तो दूसरी कोशिश कीजिए, अगर दूसरा साथी भी दूसरी कोशिश भी असफल हो जाए तो तीसरी कर लीजिए ना दोस्तों, क्या रखा है, क्योंकि सफलता हमेशा उस बच्चे को नहीं मिलती जो सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली होता है, कई बार सफलता उस बच्चे को मिलती है जो बाकी सबके रुक जाने के बाद भी कोशिश करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने दोस्तों, आज जब आप इस कहानी को सुनकर अपने आसपास देखेंगे तो शायद आपको भी कोई ऐसा काम दिखाई दे जिसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो फिर देर किस बात की, नजर घुमाइए अपने आसपास, देखिए वैसा कौन सा काम है जो बहुत छोटा तो दिखता है, असंभव भी दिख सकता है, लेकिन आप अगर प्रयास करेंगे, ईमानदार कोशिश करेंगे तो कल सूरत बदल सकती है। तो दोस्तों, आप कहीं ऐसा नहीं सोच रहे हैं ना कि आज आपके सहकत भैया सिर्फ कहानी सुनाने में लगे हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल याद है कि आपका मनोरंजन भी होना चाहिए, गीत संगीत भी होना चाहिए, ताकि झूमकर हम गा भी सके, नाच भी सके। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत जो खास आपके लिए है।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा?

तो दोस्तों नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों भाइयों बहनों, अब इस कार्यक्रम से आपके भैया सैकत को भी दीजिए इजाजत। अगले बार फिर मुलाकात होगी बाल सभा कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, बारिश का दिन है, रिमझिम फुहारों के बीच कहीं शैतानी ना करिए, भींगिए मत, क्योंकि फिर पड़ जाइएगा बीमार तो अच्छे काम कैसे होगा, पढ़ाई कैसे होगी। इसलिए सावधान रहें और जुड़े रहे हमारे साथ। दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा, जो हमारा बच्चों को संबोधित कार्यक्रम था। आइए अब जुड़ते हैं शास्त्रीय संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम राग रंग से। आज हम राग रंग में सुनेंगे राग अहीर भैरव पर आधारित मोहन वीणा वादन। कलाकार हैं पंडित विश्व मोहन भट्ट।

दोस्तों आप सुन रहे थे आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से प्रस्तुत कार्यक्रम राग रंग। आपने शास्त्रीय संगीत पर आधारित इस कार्यक्रम में सुना मोहन बिना वादन। कलाकार थे पंडित विश्वमोहन भट्ट। आइए दोस्तों अब बारी बारी से जुड़ते हैं दिल्ली और रांची केंद्र से, जहां से हम सुनेंगे समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और प्रादेशिक समाचार। दोस्तों हमारा जुड़ाव आगे भी बना रहेगा, तब तक कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कर लें।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हुई, 2400 लोग लापता। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया नेपाल से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया, बचाव दल सहित 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी गई। और महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति भवन में व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, शिक्षा, लोगों के बीच संपर्क और डिजिटल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी कल शाम मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर राजधानी ताशकंद पहुंचे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कवर करने गए हमारे संवाददाता ने बताया कि हवाई अड्डे पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले योगा फेडरेशन ऑफ उज्बेकिस्तान की ओर से आयोजित योग कार्यक्रम से रूबरू होंगे। उसके बाद वो सीधे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के महल जाएंगे, जहां दोनों नेता द्विपक्षीय बातचीत में हिस्सा लेंगे। रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है, लेकिन खनन, रेयर अर्थ मिनरल, सोने जैसी धातुएं, अन्य उपयोगी खनिज पदार्थ, मेडिकल, कृषि और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ कनेक्टिविटी के नए रास्ते तलाश पर दोनों देश जोर देंगे। प्रधानमंत्री के प्रयासों से पिछले 10 सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार कई गुना बढ़ा है। ऐसे में अब दोनों देश मिलकर आने वाले समय में मौजूदा $1 बिलियन के कारोबार को दोगुना से ज्यादा करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। ऐसे में इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं। प्रधानमंत्री इसके बाद यहां शास्त्री स्मारक और ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी केंद्र का दौरा भी करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात का प्रसारण करेगा। इसके लिए गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदायों के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम से पहले श्री सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन में श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव में विश्वास करता है।
6: एवरी नेशन हैज ए मिशन।
7: प्रत्येक राष्ट्र का एक मिशन होता है, प्रत्येक राष्ट्र की एक नियति होती है। भारत दुनिया को विविधता में एकता का एहसास कराता है। हम एक हैं और विविधता के कारण एक रूपता सुशोभित है, इसलिए विविधता का जश्न मनाया जाना चाहिए।
6: सो डाइवर्सिटी हैज टू बी सेलिब्रेटेड।
4: श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वे समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर दलित समुदाय को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का दलित समुदाय का अपमान करने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की विरासत का सम्मान किया है।
8: हमारी प्रतिबद्धता, हमें कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से किसी प्रकार को कोई प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन काल में, जन्म से लेकर के उनके देहांत तक, जहां जहां जिन जिन स्थानों पर उनका स्पर्श हुआ, उस स्थान को तीर्थ का दर्जा किसने दिया है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। स्कॉलरशिप हो, प्रतिनिधित्व हो, संस्थान हो, हर स्थान पे यदि वाकई में सामाजिक न्याय बढ़ा है तो पिछले 12 वर्षों में बढ़ा है।
4: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दलित समुदाय के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद ये प्रतिक्रिया आई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
9: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें 320 से अधिक विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह

0: ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। काठमांडू को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाला मुगलिंग काठमांडू राजमार्ग फिर खोल दिया गया है। इस बीच नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ के खतरे को देखते हुए नई चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। रसुआ, नुआकोट और धादिंग जिलों में नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भोटे कोशी तिब्बत से निकलने वाली तेज बहाव वाली हिमालय से निकली नदी है। हाल ही में आई अचानक बाढ़ से रसुआ जिले में भारी तबाही हुई थी। नेपाल के लिए 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंच गई है और नेपाल सरकार को सौंप दी गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों को सफल और सुचारू बनाने के लिए सही सामग्री और तकनीकी क्षमताओं का होना महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले भारत 3 उड़ानों के जरिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वे अलापुझा में केरल कौमुदी दैनिक के जयंती समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद श्री राधाकृष्णन पत्थनमथिट्टा जिले में अरणमुला नौका दौड़ का उद्घाटन करेंगे। शाम को उपराष्ट्रपति तिरुवनंतपुरम में ओणम पर्यटन सप्ताह के समापन समारोह की परेड को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान आपत्तियां और शिकायतें दर्ज कराने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर मौजूदा 16 सितंबर की समय सीमा को 4 सप्ताह बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की निर्धारित तारीख 19 अक्टूबर को भी बदलने का अनुरोध किया है। एशिया कप T20 क्रिकेट में आज भारतीय महिला टीम का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से शुरू होगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। स्मृति मंधाना उपकप्तान होंगी। प्रतियोगिता में 8 टीमें हैं। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी तेज बारिश की संभावना है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार में भी तेज हवाएं चल सकती हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। नेपाल बाढ़ त्रासदी पर हिंदुस्तान ने लिखा है, भोटेकोशी नदी पर बनी नई झील में बढ़ रहा है पानी। अमर उजाला की सुर्खी है, जिंदगी बचाने का संघर्ष, भारत ने नेपाल के आग्रह पर भेजे 11 विशेषज्ञ। दैनिक भास्कर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को मुखपृष्ठ पर छापते हुए लिखता है, भारत में मुस्लिम नहीं होने चाहिए, ऐसा सोचने वाला हिंदू नहीं। पत्र ने कल जारी होने वाली प्रारूप मतदाता सूची पर सुर्खी दी है, दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 47,70,000 मतदाता बाहर, दावा आपत्ति 30 सितंबर तक। राजस्थान पत्रिका ने फोमो इकोनॉमी, दिखावे में गैर जरूरी चीजों पर भी खर्च करने की आदत को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, जरूरत नहीं, पीछे छूटने के डर से हो रही युवाओं की जेब ढीली। खरीदने से पहले खुद से पूछें 3 सवाल, क्या मुझे इसकी जरूरत है? अगर ये आज उपलब्ध नहीं होता तो क्या मैं इसे फिर भी खरीदना चाहता? क्या मैं इसे अगले 7 दिन के बाद भी खरीदना चाहूंगा? सितारों से आगे देखने के लिए चिली में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप, दैनिक जागरण की खबर है। पत्र लिखता है, 260 फीट ऊंचा होगा गुंबद, 128 फीट का मुख्य लेंस, 2030 तक अंतरिक्ष में झांकने लगेगा।

0: टेलीस्कोप। नवभारत टाइम्स ने पैकेट बंद खाद्य पदार्थों में हाई फैट, हाई शुगर, हाई सॉल्ट या हाईली स्वीटेंड बेवरेज जैसी चेतावनी को पैकेट के ऊपर लाल चेतावनी वाले स्टिकर के रूप में छापने की खबर को प्रकाशित किया है। लोकसत्ता ने भी इस खबर पर लिखा है, FSSAI ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, अब दर्ज होगी चेतावनी, सावधान, इस पैकेट में नमक, शक्कर, तेल ज्यादा है।
1: धन्यवाद नवीन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हुई, 2400 लोग लापता। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। बचाव दल सहित 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी गई। और महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: trade and culture to energy defense, headlines the Sunday Express. Hindustan Times quotes RSS Chief Mohan Bhagwat in New York City as saying, must respect and protect diversity. Finance Minister Nirmala Sitharaman urges global companies to build for world from India, states the Economic Times. On the flash floods in Nepal, the Asian Age headlines, Indian experts join rescue relief operations, Nepal lauds Modi, timely aid. And finally, special feeling, Harry Kane reacts after winning Germany's Footballer of the Year award, says the Sunday Statesman. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Uzbekistan's President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent today. Prime Minister to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 this morning. Death toll from flash floods in Nepal rises to 675. Nearly 2,400 people still missing. Nepal issues fresh flood alert for Bhote Koshi River. External Affairs Ministry says 108 Indian nationals rescued so far. India sends forth relief flight carrying 11 tons of humanitarian aid to Nepal. And in women's cricket, India to begin the T20 Asia Cup campaign against Thailand in Dubai this evening. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: वेक्टर जनित रोग, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहनें और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
4: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गांव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
3: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए साझा करेंगे अपने विचार, मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया। राजधानी रांची में आज 4 सेंटरों पर होगी नीट पीजी 2026 परीक्षा। केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर से राज्य भर में हो रही है बारिश। रांची, हजारीबाग, दुमका समेत 15 जिलों में आज भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट। और राष्ट्रीय खेल दिवस को लेकर खेलेगा भारत जीतेगा भारत की थीम पर सिमडेगा, हजारीबाग, देवघर समेत कई जिलों में आयोजित की गई हॉकी प्रतियोगिता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात का प्रसारण करेगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है। एक रिपोर्ट।
1: योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। यह योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। जना के अंतर्गत केंद्र सरकार 5 हेक्टेयर तक लाभार्थी को लघु सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। छोटे और सीमांत किसानों को 55

0: प्रतिशत और अन्य किसानों को 45% तक वित्तीय सहायता मिलती है। केंद्र सरकार ने पिछले 3 सालों में 8,123 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इस योजना में जारी की है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने संताल परगना में मतदाता सूची के विशेष सत्यापन की मांग की है। पाकुड़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री मरांडी ने संताल में घुसपैठ का आरोप लगाया।
2: औसत जो वृद्धि है वो 24 है और मुस्लिम मतदाता की वो 40.9, 24 से 40 हो गया, लगभग 15-16% की वृद्धि। लेकिन वहीं पर अगर नॉन मुस्लिम, हिंदू भी है, आदिवासी भी है, क्रिश्चियन भी, उन वृद्धि दर देखते हैं तो 11.4 पर 5 वर्ष दर्शाता है। इन क्षेत्रों में निश्चित रूप से घुसपैठ हुआ है।
1: राजधानी रांची में आज विभिन्न आदिवासी संगठनों की ओर से आदिवासी एकता महाजुटान रैली का आयोजन किया गया है। भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक रांची में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। देश के कई राज्यों में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। केंद्र सरकार के जारी निर्देश के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने राज्य के सभी सिविल सर्जनों को अलर्ट रहने और संक्रमण से निपटने के लिए अस्पतालों में कम से कम 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड चिन्हित करने का निर्देश दिया है। नीट पीजी 2026 की परीक्षा देश भर के साथ ही आज रांची के 4 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक एक पाली में होगी। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने केंद्रों के आसपास 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह निषेधाज्ञा सुबह 6 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक प्रभावी रहेगी। प्रशासन ने सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल, पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारियों की तैनाती की है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत न केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है बल्कि अपनी सभ्यतागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है।
3: पिछले 12 वर्षों में शिक्षा की क्वालिटी, एसेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ी है। भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पहले के कंपैरिजन में 2 गुना हो गया है। 34 ईयर्स में पहली बार हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों और अच्छी पॉलिसीज का यह परिणाम है कि आज देश के नौजवान स्टार्टअप खड़े कर रहे हैं, यूनिकॉर्न कंपनियां बना रहे हैं। 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर, हमने अब 38वें स्थान पर अपनी पहुंच हासिल कर ली है।
1: गंगा नदी में पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन के संरक्षण, सुरक्षा एवं वैज्ञानिक निगरानी को मजबूत करने के उद्देश्य से साहिबगंज के चानन स्थित डॉल्फिन व्याख्या केंद्र में कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान विशेषज्ञ डॉक्टर नचिकेत केलकर ने डॉल्फिन संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी।
4: झारखंड सरकार के अंदर निगरानी का क्षेत्र आता दिखता है, वो कुछ 40 से 45 और अगर आप साइड चैनल भी गिनते हैं तो 60-65 किलोमीटर के दायरे में आता है। हमने ऐसा देखा है कि कभी कभार एक सर्वे अक्टूबर में होता है, उसमें मिलते हैं 60-70 डॉल्फिन।
1: बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर के कारण राज्य भर में बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान लातेहार में 61 और रांची में 15 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने रांची, खूंटी, हजारीबाग, दुमका, देवघर, पूर्वी सिंहभूम समेत आसपास के 15 जिलों में आज भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। दुमका जिले में अगस्त माह में कम बारिश होने से मयूराक्षी नदी पर बना दिगल पहाड़ी डैम अब पूरी तरह नहीं भर पाया है।

जल स्तर कम होने से धान की फसल को लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि आगे बारिश नहीं हुई तो सिंचाई के लिए डैम का पानी जरूरी होगा। प्रखंड के अन्य डैमों में भी पानी कम है। राष्ट्रीय खेल दिवस को लेकर खेलेगा भारत जीतेगा भारत की थीम के साथ झारखंड के विभिन्न जिलों में हॉकी और खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया। सिमडेगा, गुमला, खूंटी, हजारीबाग, रामगढ़, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, गोड्डा तथा देवघर में हॉकी प्रतियोगिताएं, मैत्रीपूर्ण मुकाबले और अन्य कार्यक्रम हुए। हॉकी झारखंड ने कहा कि इन आयोजनों का उद्देश्य युवाओं में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाना और जमीनी स्तर पर हॉकी को मजबूत करना है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने नेपाल में बाढ़ की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा दैनिक भास्कर ने नेपाल बाढ़ पर लिखा है, अलर्ट में एक घंटे की देरी वरना सैकड़ों जानें बच जातीं। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अब जिंदगी बचाने की जंग, नेपाल ने मांगी मदद, बचाव अभियान प्रभावित। हिन्दुस्तान ने झारखंड में स्वाइन फ्लू को लेकर जारी अलर्ट की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने माध्यमिक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में गड़बड़ी पर झारखंड हाईकोर्ट के सीआईडी जांच के आदेश की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए साझा करेंगे अपने विचार, मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया। राजधानी रांची में आज 4 सेंटरों पर होगी नीट पीजी 2026 परीक्षा, केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर से राज्य भर में हो रही है बारिश, रांची, हजारीबाग, दुमका समेत 15 जिलों में आज भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट। और राष्ट्रीय खेल दिवस को लेकर खेलेगा भारत जीतेगा भारत की थीम पर सिमडेगा, हजारीबाग, देवघर समेत कई जिलों में आयोजित की गई हॉकी प्रतियोगिता। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉड पर एक मेल भेजा, रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन

मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉड पर एक मेल भेजा। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन